0: बीस जीबी चलाओ,
1: बीस फिफ्टी
0: फोर्टी सेवन टेन फिफ्टीन This DL is going to be a Missouri driver's license. Echo 125-283-012 on the Darius Bernard Young.
1: I got Echo 215, Echo 125-283-012.
0: Five two eight three zero one two.
1: 10-4, copy.